0: संगत जी उस दिन तो उस नूं भाई जीवड़ा जी कहण लग पाए। मानक चंद क्योंकि मरिया जिउंदा होया है, उस दिन तो संगता भाई जीवड़ा जी भाई जीवड़ा जी आखदियां ने।
1: जिसके घर संतत जब होई,
0: फिर होर भी संगत जी उस दे घर

0: सुख कब हो ना पावहे, जन्म मर है मर जाहे। नानक बख्श लय प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सही विचक्षण जंत, जिनी हर त्याया।
1: सही विचक्षण बबे दी सिहारी दे सहत पाठ गेतर ला के चचे ते अदक दा प्रभाव देना। सही विचक्षण जंत, जिनी हर त्याया।
0: अमृत

एक मन एक चित पाए, हर किया सदा सदा वडियाईया, दे ना पछोताए। हाउ हर कै सद बलिहारण।

0: वेद पुराण सभ है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सयाने उठ पंडित पै चले निरासा।
1: काल ग्रस्त चरना जरारा ला के काल ग्रस्त सब लोग सयाने सयाने पाठ कसके करना उठ पंडित पै चले निरासा।
0: मान रे सरयो ना एक है काजा भजयो ना रघुपत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया।

है ते उचारण भी यह जिया ही उचारण ला के करना, जज्जा उचारण जा ऐड़ा आह नहीं कहना, जिवें उचारण लिखती रूप है यह माला अपनी लीजे।

0: अपने कोलों नहीं लाउणा, जिवें ज्ञानी जी ने उचारण कीता है राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की।
1: घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा तौ जन धीरज पावा, नाद समाए लोरे।

0: कियो बहु बानी खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ न बिसरियो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत ब्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाढ़ी अब एह खास्यो कहिए जा कारण हम
1: बाढ़ी जिवे उचारण किया गया इसे तरह उचारण करना ध्यान दे नाल साध संगत जी बाढ़ी हां जी
0: जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहु सहिए दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेके
1: दुर्लभ लल्ले ते

औरत दा सत्कार करदिया होया बख्शिशा करदिया होया। सो साध संगत जी जदों कोई माई भाई गुरमुख प्यारा कोई भी आउंदा एक सार उपदेश दिंदे। सो साध संगत जी मात सुलखणी जी नूं गरीब नवाजियां ने पावन उपदेश बख्शिश कीता, अज सानू कलयुगी जीवां नूं बख्श रहे हन।

0: दोखी निरंकार। हे प्रभु निरंकार तेरे इतने रूप इतने रूप। हुण इस सवैये मैं थानू सुणांदा जावां ते मैं सारी रात लंघ जाएगी। मुख्तसर मैं अर्ज करां समाप्ति करां। इस सारे रूप कलगीधर पातशाह बयान कर रहे ने। अज तक ते आखिया गया है परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप है। पर जाप साहब विच महाराज कहिंदे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तैनूं नमस्कार करदा, पर अंधेरा भी तेरी शक्ति तो बिना नहीं हो सकता। मैं इसनों भी मत्था टेकदा नमस्कार। इतनी समदृष्टि। जद भी किसी का सुनिया होया भरोसा बनता है, तो भरोसा भावना बन जाता है, भक्ति बन जाता है, उस समदृष्ट हो जाता है। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, समदृष्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी दृष्टि समदृष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी की अमृत दृष्ट, वो वास्तविक समदृष्ट हो जाता है। सारिया नु इको जिहा सम बराबर बराबर करके देखण लग पैंदा है। इसे तरीके नाल एक मुस्लिम फकीर अमीर खुसरो इंज बयान कर देता है। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुतखाना। ए प्रभु हुणे तू आप फैसला करो, मंदिर सी के मस्जिद सी, तेरे गीत हो रहे सन, तेरी गल हो रही सी, मेरा सिर झुक गया, मैं मत्था टेक दिता, मैं सजदा कर दिता। बेखुदी में हम तो तेरा दर समझ कर झुक गए, अब खुदा जाने वो काबा था या बुत खाना। ये ऋषियां नालों घट गल नहीं है, ब्रह्म ज्ञान दी शिखरता नूं छूंदी है। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने अक्सर भरोसा डोल जांदा है। इस वास्ते अरदास है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। अवल ते कोई विरला ही सुनदा है, स्रोता सुनना ते सुनिया होया अगर वाकई मन ने मन लिया, सुनिए मनिए, नहीं ते की सुनिया, मनिया नहीं ते की सुनिया। मैं एक दफा फिर दोहरावा, खादा होया भोजन जो शरीर दे विच रह जांदा है ओही खून बनदा है। सुनिया होया गुरु दा वचन जो मन मन लैंदा है ओही मन दा हिस्सा बनदा है, वरना नहीं बनदा, नहीं बनदा। वह भरोसा बन जांदा है, विश्वास बन जांदा है। पर यह मनुख खतरे च होवेगा, भरोसा डोल सकदा है, विश्वास डोल सकदा है। सुनदा रहा मनदा रहा ते भरोसा वद्दा गया वद्दा गया, अगर यह भावना बन गया भक्ति बन गया, हुण इहदे शरीर दे टुकड़े टुकड़े ते हो सकदे ने, तां भरोसा नहीं डोलेगा। जो कुछ सर्वन कीता है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चरणां च अरदास बिने है, सतगुरु थोड़ा सुनिया होया मनन तक पहुंचावे। मनना दृढ़ भरोसा बन जाए, विश्वास बन जाए, ते विश्वास भक्ति बन जाए, भावना बन जाए। सुनिए मनिए, मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल्लाओ, यही अंदर दा तीरथ है, सारे पापा नु धोल देने। माघ पुनीत भई तीरथ अंदर जाने, यही अंदर दा तीरथ है, सारे दुख मिट जाने, सारे पाप मिट जाने। साहिब इस तरह दी निर्मलता पवित्रता ते आनंद आप जी दी झोली च पावन। वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

इस शलोक का तर्जमा किया है कि करक करे जे माही, वो लिखता है वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, वैद ने जब नब्ज देखी तो आपने फौरन कहा, नब्ज को क्या देखते हो, नब्ज में रखा है क्या, जिस मर्ज की जुस्त जू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। तेनू की पता, जिस मर्ज की जुस्त जू में नब्ज पे रखते हो हाथ, मुझे दर्दे इश्क है और इश्क है मौला के साथ। ये दर्दमंदा दे बोलने बाणी विच, जिन्ना जिन्ना नू बिरखा दी दर्द उठी, उन्हां कुठिया होया ने उस दर्द विच फिर रब्बी गीत गाए। बाबे फरीद अंदर दर्द सी, ते उन्होंने दर्द नू पुकार के क्या, रब जी के देखो मेरी एक हालत, चिंत खटोला वाण दुख आ दर्द, चिंत खटोला वाण दुख बिरह विशावन लेफ, एओ हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख, दूजे नू की पता साडी दर्द दा। ओना अंदर दर्द उठी, ओना शब्द कहे तन सुक्का पिंजर थिया, तलिया खुंडा कांग अजे सो रब ना बौड़ियो, देख बंदे के पाक। उस दर्दमंद महापुरख ने क्या के कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मास, ए दो नैना मत शुहो फिर देखन की आसो, एक दर्द है। कबीर साहब अंदर दर्द पैदा होया, ओना शब्द बड़े भाव पूर्त गए, पंत निखारा कामनी लोचन भरी ले उसासा, उरना भिजै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा, उडो ना कागा कारे बेग मलीजे अपने राम प्यारे। ओ दर्द उठी नामदेव अंदर, मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करूं शिंगार, भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन पन तन मन राम प्यारे जोग। वैगुरु मेर करे, पर याद रखियो कि दुनिया दी दर्द उठे ओ कई वरी मौत नू जन्म दें दिए, रब नू मिलन दी दर्द उठे ते ओ अमोलक जीवन नू जन्म दें दी। फिर बेनती समझियो, इस दर्द नू दुखांत ना समझना, इस दर्द नू अंदर दी घाट ना समझना। वाहगुरु कितने कु भागां वाले ओ नेत्र ने जिन्हां नेत्रां विच तेरी याद दे अथरू निकलदे। इत्थे एक बेनती उदाहरण मैं देना वा, तुसी बीबियां माइयां भैणां बैठियां जी, इस मेरे शब्द नू ए मत समझियो, वासना वल मत खिचियो कि जदों माता दे उदर विच संतान निवास कर दीए, एक ऐसी मिठी दर्द है। अपने बच्चे नू अजे देखिया नहीं, पर जन्म तो पहला मां अपने पुत्र दे भविख दे सुपने लेंदी। बाबा जी ने बाणी च कहा कि ज्यों जननी गर्भ पालती, अजे बच्चा नहीं, ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, सुपने लेंदी है वड्डा होए तन खाट दे कर भोग बिलासा। उसने अपनी कुख च उस दर्द नू खंडाया, ते ज्यों ज्यों ओ संतान दा विकास हुंदा, त्यों त्यों माता दी रात दे नींद भी चली जांदी। देखो तुसी, ओ है दर्द, बच्चे दे जन्म तो पहला मां दी नींद भी चली गई, पर जिस वेले मां ने अपने बच्चे नू जन्म दिता, ते ओदे गले विचों ओदे अंदरों एक चीख एक आवाज निकली, ओ अखां च पानी लैके रोंदी भी ए कुरलांदी भी ए, बच्चे नू दे जन्म देन लग्या ओदियां चीखां सुनिया नहीं जांदियां। पर दुनिया विच कोई ऐसी दवाई नहीं कि जेड़ी चीख मार दे कोई बंदे नू एक खिन विच खासा दे देवे, जन्म वेले दर्द नाल चीख रही है ते जदो पुत्र छाती ते लटाया जांदा है चीका मारदी हुई हसन लग पैंदी। दर्द है, पर चेते रखियो उस दर्द ने किन च किड्डे वड्डे सुख नू जन्म दे दिता।

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावे
0: एक बस्त कारण बिखोट गवावे
1: एक पीना दे दस पी हिर ले
0: दो मूड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकुर से ना ही चारा
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार
1: जाके मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुखता हु मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास
1: अपनी ईमान कश बहो शाह ले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रदीत आप ही घोवे
0: और उसका विश्वास न हो
1: बस्ते सागर रखे
0: की आज्ञा मन मथ
1: उसके चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: नानक भांत माया के हित
0: सरपर होवत जान अनेत
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: जो दिस सो चालन हार
0: लपटर होत अंधा धार
1: कटाऊ स्यों जो लावे नेह
0: ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया
0: मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावहे
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा
0: मिथ्या बास लेत बिकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: बिरथी साख की आरजा
0: साच बिना कह होत सुचा
1: बिरथा नाम बिना तर अंध
0: मुख आवटता कह दुर्गंध
1: फिर सिमरन दिन रहन बिरथा विहाय
0: एक बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: कृपन के निरार्थ दाम
1: धन तन तेज अन दे कट बस्यो हर नाऊ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहते अवर कश अवर कमावत
0: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत
1: जन नहार प्रभु प्रवीन
0: बाहर पीक न काहू भीन
1: अवर उपदेश है आप न करे
0: आवत जावत जन मैं मरे
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप
0: जिसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम भाने दिन प्रभ जाता
0: नानक उन जन चरण पराता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे मन
1: आप करतन बेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप सियान सकल ते रहत
0: सब कुछ जाने या तमकी राहत
1: जिस भावे तिस लय लड़ लाए
0: शांत नंतर रह समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: नमक नमक जप नानक हरी श्लोक
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अमदेव
0: नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी
1: जे प्रसाद छति अमृत खाहे
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जे प्रसाद सुगंध तन लावहे
0: जिसको सिमरत परमगत पावे
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: चाहते आए सदा मन अंदर
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: जे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याई है ध्यान जोग
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे
0: जिसे त्यागत अवर लुभावे
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय
0: मन आठ पहर ताका जस कवि जय
1: जे प्रसाद तुझ सब को मन
0: मुक्ता को जस रसन बखाना
1: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
1: रब जी जप्त दरगाह मान पावे
0: नानक पत से ती कर जावे
1: जे प्रसाद अरो कंचन देही
0: निबला बोत सराम स्नेही
1: जे प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
0: नानक ताकी भगत करे
1: जे प्रसाद अभूखन पहरीजे
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे
1: जे प्रसाद असवस्त सवारी
0: मन तिस पापो कभू न बिसारी
1: जे प्रसाद बाग मिलख तना
0: राग प्रय प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याई
1: इसे ध्याय जो एक लख है
0: यहाँ उहां नानक तेरी रख है
1: जे प्रसाद करहे पुन बहुदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
1: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: इस प्रभु सास सास तारी
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
1: जे प्रसाद तेरी नीकी जात
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जे प्रसाद तेरी पत रहै
0: गुर प्रसाद नानक
1: जे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
0: जे प्रसाद पेखे विस्माद
1: जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना
0: जे प्रसाद सुख सहजे वसना
1: जे प्रसाद हस कर चलहे
0: जे प्रसाद संपूर्ण फलहे
1: जे प्रसाद परम गत पावहे
0: जे प्रसाद सुख सहज समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग अबर कत लग हो
0: गुर प्रसाद नानक मन जग
1: जे प्रसाद तू प्रकट संसार
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप
0: जे मन मूड तू ताको जाप
1: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: जिसे जान मन सदा हजूरे
1: जे प्रसाद तू पावहे साच
0: जे मन मेरे तू ता सिंह
1: जे प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपै जप सोए
1: आप जपाई जपै सो नाउ
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ
1: प्रभ कृपाते होए प्रकाश
0: प्रभु दयाते कमल विकास
1: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभ दयाते मतूतन होए
1: सर्व निधान प्रभ तेरी माया
0: आपो कछु न किन्हु लया
1: जित जित लाभ हो तित लगहे हर नाथ
0: नानक हिन कै कछु न हाथ श्लोक
1: अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुखता होए।
0: सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी
1: साध का संग मुख उजल होत
0: साध संग बल सगली खोत
1: साध का संग मिटे अभिमान
0: साध का संग प्रगट सुज्ञान
1: साध का संग बुझे प्रभ नीरा
0: साध संग सब होत नबेरा
1: साध का संग पाए नाम रतन
0: साध का संग एको ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
1: साध का संग अगोचर मिले
0: साध का संग सदा प्रफुल्ल
1: साध का संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध का संग मनोहर बैन
1: साध का संग न कथूं पावे
0: साध संग अस्तित्व मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महापुनीत
1: साध संग किस्सो नहीं बैर
0: साध के संग न बीगा पैर
1: साध के संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हो ताप
0: साध के संग तो जैसा व्याप
1: आपे जाने साध पढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध के संग न कभू पावे
0: साध के संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह
0: साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बस थान ऊंचे
0: साधु के संग महर पहुंचे
1: साध का संग दृढ़ है सब धर्म
0: साध का संग केवल पार ब्रह्म
1: साध का संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के कुर्बान
1: साध का संग सब कुल उधार है
0: साध संग साधन मीत कुटम निस्तार है
1: साधु का संग सो धन पावे
0: जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साध का संग शोभा सुर देवा
1: साधु का संग पाप पलायन
0: साध संग अमृत गुण गायन
1: साध का संग सर्प थान गम
0: नानक साध का संग सगल जनम
1: साध का संग नहीं कशकाल
0: दर्शन भेटत होत निहाल
1: साध का संग कुलूकत हरै
0: साध का संग नरक पर हरै
1: साध संग इहां उहां सुरेला
0: साध संग विश्वतार मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साध के संग न बिरथा जावे
1: पार ब्रह्म साध रित बसे
0: नानक कुदरे साध सुन रसे
1: साध के संग सुनो हर नाम
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग घड़घड़ दीठा
1: साध संग भई आज्ञाकारी
0: साध संगत भई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध भेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने हैं
0: जिता सुन तेता बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची
0: साध की शोभा मूच ते मूची
1: साध की शोभा साध बनाई
0: नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक
1: मन साचा मुख साचा सोए
0: अवर न पेखे कस बिन कोए
1: नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए
0: अष्टपदी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: जो बसता को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक जो पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
0: मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जिन प्रभ आप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पे
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का विता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे हे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने थे
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी अपरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी।

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हो कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: में हो जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले प्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नर्क स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्प की रेन जहाँ का मन होए
0: कौन नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस कौशक नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: जब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: जब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु पर साधना नक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रत्न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विद्या के करे
0: मैं तक तावे खप खप मरे
1: बिना संतोक नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: दुर्भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आपे एका पै अनेक
1: मरे न बिनसै आवे न जाए
0: नानक सभी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप तीनों आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते भिन्न कहो किस होए
0: आंत अंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदै के बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुनि सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तरे
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन का दुखन तृष्णा मह जलाए
0: संत का दुखन सब को छले
1: संत का दुखन तेज सब जाए
0: संत का दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाओ को नाही
0: नानक संत भावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज तेहीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजोग
1: संत के निंदा दुख में दुख
0: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा अपवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत भावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृत की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाहे
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत भावे ता लय उबार
1: संत का दुखी इं बिल लाए
0: ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआड़ तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तो रही पया
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा भावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब करते इसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रापी उसत करहो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वर्त तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपागी नानक जन से श्लोक
1: तजहु सियान पुसुर जन हो सिमरहु हर हर राय
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्ट ਪਸ਼ੁਪਤੀ
1: ਮਨ ਉਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਦੇਵਨ ਪਉ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਆ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨਕ ਕੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਬੇਟਾ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਹਰਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੇ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਹਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਪਸੰਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸਤੇ ਦਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਪੂਜਿਆ
1: ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਨੈ ਕਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਨੈ ਕਿਸ਼ ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਟ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉੱਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਤਾਪ ਸਹਿ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਿਆ

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै
1: रखे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आल जंजाल विकास से रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक नवहि खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊत पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबका मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये फल तिस जन कै मुख भनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुत पजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो कर

पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया।

0: पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दन जिंदा तरीका जे मिले तमस्तक लाई।

0: काल पूर वर्ष कल काल फेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जे को तो कुबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैविच खुम चढ़ाइए सरु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: जुगत न जाने हैं छड़ बह है करबार। सब को पूरा आपे होवे कठन कोई आखे, पत प्रवण पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे।
1: पहला ज्ञान का सच्चा वेखे सोए, सबनी चारा मारिया करता करे सोए। अगे जात न जोर है।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो रहा गुनगा साधन हमारी।

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो कल जुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख्या पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही सूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पड़े निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते बड़ते।

चतर चक्र वर्ता चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं शुभंग सर्वदा सर्वजूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अपंगं विपूते चतर चक्रवर्ती।

निरंकार का चिन्हतन है पेवा पापनी बोध है जेति बरनद भिन्न भिन्न तोह तेति तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सदा प्रथम संसारा एक रूपा नूप स्वरूपा रंक पहयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी।

भाई संबत 1775 अर्ध सहस फोन तीन कह जय भाद्रव सुधि अष्टमी रावारा तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

न जाने, तता सार न जाने गुर बाजो, तता सार न जाने तेहि गुणी संसार, भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते।

सतगुरु इच्छा प्रखियन कर प्रगड़ाक सुनाया। सतगुरु मिलया सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एवं विचार है।

नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मिले स्थान ले पूजे प्राण पाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखा चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे ओ न साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली प्रेण कौ नानक सच ध्याईए सुच होवे ता सच पाईए पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाईंदा आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराईंदा बड़ो बड़ा

चढ़े सो तरे जो शरदा कर से वंदे गौर पार उतारन दिली ताकत पार बहेगी आप गुरु की छत।

दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाय। होवे सिवत खसामदि नोर अरसो पुरसो चटिए सद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिए। सज्जन सच्चा पात साहो सिर साहां दसाहो

गोबिंद सिंह हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह।

परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदे नहीं मनदे। फिर क्यों आया ये फिर गुरु अर्जन देव जी खोलते हैं। और गजब की गल ध्यान सुनना, मम्मे अखर कोई खोल मां अखर वो बावन अखरी कबीर दी, ये बावन अखरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। महाराज इस श्लोक विच कहते ने मनुख परमात्मा नु मनदा नहीं है, मनुख परमात्मा कोलो मंगदा मंगदा नहीं। मंग पूरी हो जाए तां संबंध टुट जांदा है, मंग ना पूरी होवे तां संबंध गल खत्म। संबंध ते सिर्फ मंगदा। तो हुण अपने पावन पवित्र श्लोक विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सो जाना। मंगदा ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे। क्या परमात्मा देंदा है? देंदा। आख है मंगे दे दे, दात करे दाता देंदा। मंगदा है वो देंदा है, मंगदा है वो देंदा है। जो दे ही जा रहा है उस नाल जुड़ी जा रहा है, जो देंदा पे है उस नाल टूटी जा रही है। हकीकत है मम्मा मांगन हार इयाना, इयाना है। जो मंगण का संबंध परमात्मा नाल जोड़दा है इयाना है। ये जो परमात्मा नाल मनण का संबंध जोड़दा है, मनदा है, प्रभावित है, वो इतना सियाना है। महाराज कहते हैं मन्ने की गत कही ना जाए, देखो कहे बचे पछता। वो दी महिमा बयान ही नहीं की जा सकती जो परमात्मा को परमात्मा करके मनता है। इतनी सौखी खेड ना समझा सी, मनदे हैं गुरु नूं, आए हैं गुरुद्वारे, नहीं मंगते हैं। कुछ चाहिए है, कुछ कामनावां संसार को नहीं पूरी होंगे शायद गुरु तो पूरी, कुछ कामनावां परिवार तो नहीं पूरी होंगे शायद गुरु तो पूरी, कुछ खेड़ बाजार विच नहीं बन सकी शायद गुरु कोल बन जाए, कोई खेड़ मित्रा पुत्रा कोल नहीं बन सकी शायद प्रभु कोल बन जाए। मंगण दस गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर उसे ही श्लोक विच कहने ने मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना। पर जो मांगे तो मांगे बिया, जानते कुशल ना कबहु थी है। बिया लेंदी पंजाबी दा अक्षर होवे, इहदे अर्थ बन जाने ने और बिया मंगदा है, और मंगदा है। बिया शब्द चढ़दी पंजाबी दा होवे अमृतसर जलंधर दे जो बोली जाती, पर बिया दे अर्थ ने परुथा है। बई रोटी है, बिया भोजन है, परुथा भोजन है। इत्थे जो अर्थ बनते ने वो लहंदी पंजाबी का शब्द है, होर मंगदा है। जो मांगे तो मांगे बिया, परमात्मा को जो कुछ भी मंगदा है परमात्मा नु छोड़ के होर मंगदा। ऐ दे ऐ दे ऐ दे, ऐ मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए। फिर परमात्मा आखे मैं भी आ जावा तेरे घर, ना ना तेरी कोई लोड़, तू एक पास तेरी लोड़। होर मंगदा है परमात्मा को, परमात्मा को परमात्मा नु नहीं मंगदा। इस वास्ते होर ते मनुख को हो जाता है, परमात्मा नहीं होता, नहीं आंदे आया भी नहीं आता।

0: सिंह बात और डेरी लैकी आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट ट्रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस. इन्वेस्ट करो 8 एकर्स अते 100,000 स्क्वायर फीट की ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस. तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवे विच नर्सरी दे नाल नाल 5 बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इनक्रॉन आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ. आज ही संपर्क करो गुरदयाल सिंह बात नू एट 604-351-5111.
1: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.

0: अंदर हमारी सरकार आ गई। 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala baby, yeah.
2: Mercy.

जैसू साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

मेहनत करण दी की लोड़ है, यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता। मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इस इस तरह कहते हैं, गाल ना मिले हो, सेव ना मिले हो, मिले हो आए अचिंता, मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिले, सेवा नाल नहीं मिले, दान नाल नहीं मिले, पुन नाल नहीं मिले। कोई दान करोड़ा दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता। ना कीते जप नाल मिलदा, ना दिते दान नाल मिलदा, ना कीती सेवा नाल मिलदा। फिर किस तरह मिलदा है? वो मिलदा है अचनचेत। गाल ना मिले हो, सेव ना मिले हो, मिले हो आए अचिंता, अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद, उदी बख्शिश, उदी रहमत। मेहनत नहीं, उदी रहमत। आया ये रहमत आखिर होंदी होवेगी, कोई ढंग ते है, कोई तौर तरीका ते है। इन्हां गुंजलां नूं गुरबाणी ने जिस ढंग नाल खोले है, मैं कल आप जी दे सामने रखण दी कोशिश करांगा। और समय नूं मुख रखदे होया इंज कह लो, कल समाप्ति कर देंगे। उंज ये मूल मंत्र धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी सारी बाणी मूल मंत्र दी व्याख्या है। दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथ इंज कह लो मूल मंत्र दा टीका ने, और कुछ नहीं। ईश्वर दे सारे बुनियादी गुण मूल मंत्र दे आ गए ने। वो एक है, वो ओंकार है, उसकी उत्पत्ति पालना नाश हो रहे, वो एक सत है, वो जो एक है उसका नाम है, उसे दा ही नाम है, अमिट है, बाकी किसी का नाम नहीं। सब नाम मिट जाते हैं, समा पा के मिट जाते हैं। वो जो एक है वो ही करता है, और जो एक है अपनी कृत दे बैठा है, अपनी कृत तो वक नहीं है। वो जो एक है उसके स्वभाव दे भय नहीं है, उसके स्वभाव दे वैर नहीं है, उसकी होंद दे काल नहीं है, समा नहीं है, वक्त नहीं है। वो जो एक है बकायदा मूर्तिमान है, और वो जो एक है उसनु किसी ने बनाया नहीं, अजो नहीं है। वो जो एक है सैभंग है, अपने आप तो आप ही विस्तृत होया है, अपना बसारा उसने आप ही कीता है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचे हो ना। वो जो एक है वही गुरु है, वो जो एक है वही प्रसाद। इस सारी व्याख्या उस एक दी, फिर सारे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी उस एक दी व्याख्या, दुनिया दे सारे धर्म ग्रंथ उस दी व्याख्या, जेडे मूल गुण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मूल मंत्र दे बयान कीते ने। गुर प्रसाद इसका थोड़ा जहा खुलासा कल आप जी दे सामने रख के, इस दौर दे जो आप जी नाल संजोग बनिया दो हफ्तिया का, कल जो है समाप्ति करांगे। रोज आप समा कटते रहे, सतगुर रहमत करन कि गुरुद्वारे आन का ख्याल रोज आवे। थो मैं इतना अर्ज कर दिया, जिमें आदमी पुत्रां कोल बैठता है, मित्रां कोल बैठता है, पत्नी कोल बैठता है, पति कोल पत्नी बैठती है, भरा कोल भरा बैठता है, जैसे मित्रां कोल बैठते हैं, इसी तरीके नाल गुरु कोल आके बैठना चाहिए। और थोड़ा जहा मैं अपने अनुभव के आधार से कह दिया, नहीं कीर्तन हो रहा ता भी ना सी, बैठना भी लाभकारी। इतना भाव होवे कि असी गुरु नानक दे कोल बैठे, असी कलगीधर दे कोल बैठे, ये बैठना भी लाभकारी हो जाएगा। सुनना तो लाभकारी है, बैठना भी लाभकारी, लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि मन दे भाव इस तरह के जो है बनन। खैर बाकी विचार कल थानू जो है लेटना करा। एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, वो गुरु है, सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, सिर्फ सूरज की रोशनी उसे तो नहीं आ रही, ज्ञान की रोशनी भी उसे तो आ रही है। और वो प्रसाद है, उस दे च करोपी नहीं है, उस दे च सराप नहीं है, वो जालम नहीं है, रहमान है, रहीम है, वो करीम है, वो प्रसाद है, वो बख्शिंद है, वो दयालु है, वो कृपालु है।